मुश हो गया सब कुछ, सारा एक्सिन बेक्सिन हो गया, अब क्या चाहिए हमें? दैट वी वांट टू बी हग्ड एंड किस्ड एंड करेस्ट. लेकिन कुछ इस संप्रजाति के मानव होते हैं, बेसिकली दैट काइंड ऑफ मैन यार, जिनको ये लगता है कि बस अब सब कुछ हो गया ना, अब नहा लेते पहले जल्दी से भाई, फटाफट फटाफट. एंड यू आर लाइक कि यार वो कडल स्नगल्स, तो ही इज लाइक 2 मिनट करा तो है कडल स्नगल्स, अब जल्दी से नहा लेते हैं उसके बाद कडल. भाई ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस प्री मच्योरली ब्रेक कर रहे हो. आप नहीं नहा सकते हो जब तक आपकी बंदी को कडल स्नगल्स फुल ऑन नहीं मिल गए, जब तक वो ना कहे कि एयू यार यू आर सो स्वेटी एंड यू आर स्मेलिंग ऑफ लाइक यू नो ऑल ऑफ दिस नॉटी स्टफ दैट वी हैव डन, तब तक तुम जाकर नहीं नहा सकते. ठीक है, वैसे तुमसे पूरे सावन के महीने में नहाया नहीं जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इट्स इनफ ड्यू टू कीप यू वेट एंड वट एवर. लेकिन वैसे तुम्हें नहाना है जब हम तुम्हारे साथ स्नगल टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लो मुन्ना. ठीक है, अगली बार तुमने स्नगल टाइम के बीच में नहाने का प्रस्ताव रखा ना, तो हम ब्रेकअप का प्रस्ताव रख देंगे. उसके बाद तुम डिसाइड कर लो, हम चले गए तो वापस मुड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पैंट्स भी हम ही पहन रहे हैं और डिसीजन भी हम ही मेक कर रहे हैं. दैट सेड, अगर आपका बॉयफ्रेंड इतना पूकी है दैट यू कांट डू ऑल ऑफ दिस विद हिम बिकॉज ही इज जस्ट जनरली लाइक अ रेड फ्लैग नहीं ग्रीन फ्लैग, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू डार्लिंग, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना.

0: पूछेगा आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई
1: हाँ
0: थी
1: जी,
0: विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी, हाँ
0: मैं
1: जी
0: सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
0: संतोष, संतोष,
1: संतोष।
0: संतोष। सो क्या चल रहा है
1: आप
0: अभी?
1: क्या
0: आपको
1: करते हैं?
0: डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं,
0: तो अभी ना
1: बताइए।
0: मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए, मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू डू?
0: आई एम एंट्रोनोर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एम्प्र एम्प्रतो एं एम्प एंट्रप्रेन्योर एं दुकान है मैडम कपड़े की अपनी, दुकान अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसी रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद।

0: आपका कॉलीग आपके भाई जैसा है, लेकिन घर होते हो जब आप अकेले तो यू हैव डर्टी लिटिल ड्रीम्स अबाउट योर कॉलीग। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है व्हिच यू जस्ट कांट शेयर विद एनीवन एल्स बिकॉज और किसी को बताओगे तो वो आपको जज करेगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। जल्दी से अपना नंबर भेजो इंस्टा पर या FB पर, मैं पक्का आपको फ़ोन करूँगी और आपकी जो सीक्रेट है ना किसी को नहीं बताऊँगी, सिर्फ आपको रोशिफाई करूँगी एंड बात खत्म। अभी के लिए मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर।
1: हाय रोशी।
0: आपका कन्फेशन मुझे तो पता है बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन इंस्टा, बट मुझे एक बार फिर से बता दो ताकि सबको पता चल जाए कि इस दुनिया में कितनी सारी वीक चीजें हो सकती हैं।
1: तो ये ना मतलब इट हैपेंड सम इयर्स बैक। माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा बर्थडे था तो वो भी आई हुई थी एंड ऑब्वियसली मेरा कजिन भी आया हुआ था। सो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज़ सीक्रेटली ना वो मेरे को थोड़ा पसंद था। तो पर
0: थोड़ा पसंद था मतलब?
1: बहुत ही पसंद था, लाइक यू नो उसके सपने देखते रहो और इमेजिन करते रहो, अगर ये भाई नहीं होता तो शायद कुछ हो जाता।
0: आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, करेक्ट, कैरी ऑन कैरी ऑन।
1: तो फिर हम बर्थडे पे थे एंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कजिन के बीच में काफी बातें होने लगी एंड आई थिंक दे रियली कनेक्टेड। अगले दिन मेरे से मेरा कजिन उसके बारे में पूछ रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पूछ रही है, आई थिंक रियली कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है ये वो, डिड ही टॉक अबाउट मी। सो आई हैड टू लाई बिकॉज दिस jealousy in me was like no, I can't see them together.
0: Oh
1: क्या
0: my
1: पता
0: God.
1: मैं हो सकती हूँ ना। आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि नहीं यार उसने तो नहीं पूछा, वो तो ऐसे ही लड़कियों से बातें करते रहता है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो पूछ जाओ उसके बारे में। एंड शी वाज प्रीटी हर्ट अबाउट दैट बिकॉज इट वाज लाइक द फर्स्ट गाय शी वुड बी थिंकिंग ऑफ डेटिंग और समथिंग एंड ऑल। तो या
0: बुरा नहीं लगा आपको?
1: एंड अब लगा ना, तो अब हुआ क्या कि लड़के ने भी पूछा, सो आई टोल्ड हिम कि नो वो ऐसे लड़कों को भाव नहीं देती, सो डोंट गेट योर होप्स हाई। सो दे अभी नाउ रिसेंटली सो दिस हैपेंड लाइक अ ईयर बैक अगेन, इट वाज माय बर्थडे सो दे मेट अगेन एंड देन दे काइंड ऑफ लाइक दिस होल थिंग गॉट अनरैवल्ड अबाउट बिकॉज बोथ ऑफ देम वर रियली एंग्री विद ईच अदर, टर्न्ड इनटू दिस यू नो कन्फेशन सीन इन माय पार्टी। And because it was my birthday, तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, पर फिर अगले दिन तो अब मेरे से कोई बात नहीं करता। मेरे से पूछा तुमने झूठ क्यों बोला, मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने क्यों झूठ बोला।
0: बेब, यू नो इस सारे चक्कर में इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन हेल्प यू एंड ओनली वन थिंग, वो सिर्फ रोशिफिकेशन है, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट सी एनी होप फॉर यू हियर माय लव।
2: यू हैव बीन रोशिफाइड।
0: If I was to put myself in your shoes, then प्यार तो अंधा होता है पुष्पा। आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर, और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपके दिमाग के 5-6 पेज मिसिंग है, then I think you're the perfect Roshian. Hit me up on Insta या FB and we will get talking. नाम 6 मिर्ची रोशी, काम 6 आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: एलएलसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: वाराणसी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट

सफाई के बारे में एक बहुत क्रीपी चीज़ नोटिस की है, दैट बेसिकली उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स मेरी तरह दिखती हैं और मैं अपनी मम्मी की तरह दिखती हूँ. सो एसेंशियली ऑल हिज गर्लफ्रेंड्स लुक आइदर मम्मी की तरह या मेरी तरह. एंड देन आई फाइंड आउट फाइनली आफ्टर रिसर्चिंग कि ये इसलिए होता है क्योंकि इट्स अ थिंग कॉल्ड सेक्शुअल इम्प्रिंटिंग, जो सिर्फ आदमियों में होता है, औरतों में नहीं. आदमी अट्रैक्टेड फील करते हैं टूवर्ड्स वीमेन जिनका बोन स्ट्रक्चर बिल्कुल उनकी माओ की तरह होता है. सो माय मम एंड आई हैव लाइक अ रियली शार्प जॉलाइन एंड मोस्ट ऑफ करंट्स गर्लफ्रेंड्स, मोस्ट नहीं एक्चुअली ऑल ऑफ देम हैव इक्वली शार्प जॉलाइंस. अब देखो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो की तरफ, देखो अपनी मम्मी की फोटो की तरफ एंड देन गेट क्रीप्ड आउट अ लिटिल बिट. और जब क्रीप्ड आउट की फीलिंग चली जाए एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट रिलेशनशिप्स, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बैकबेंचर रहे हो, इट डज नॉट मीन कि जिंदगी भर आपको बैकबेंचर रहना चाहिए. ये आपको सिखाते सिखाते मैं थक गई हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी एडवाइस चाहिए कैसे आप अपनी जिंदगी में जीरो से हीरो बन सकते हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अमित है. हाय अमित.
1: हेलो रुचि.
0: ओले सो क्यूट, यू हैव जस्ट चेंज्ड माय नेम टू साउंड लाइक रशिया इन हिंदी. हेलो रुचि, कैसे हो आप?
1: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ.
0: झूठ मत बोलो, इतने लंबे चिट्ठे लिख के भेजे आपने मुझे इंस्टाग्राम पर.
1: यार बचपन से मतलब कि मैं पहले पढ़ाई में बिजी रहा.
0: हाँ.
1: मतलब कभी मौका ही नहीं मिला
0: क्या करने का,
1: मतलब गर्लफ्रेंड टाइप, मतलब इन चक्करों में पढ़ने का. तो रिसेंटली मतलब मेरी अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कॉलेज वॉलेज सब खत्म हो गया, उसके बाद जॉब भी मिल गई. अब बढ़िया. तो अब ये है कि अब लाइफ को सेटल करना है. अब मेरे को फाइनली एक लड़की पसंद आई, उसके साथ मैं इंस्टा पे हूँ भी, सब कुछ है. कभी कभार बात करती है, कभी नहीं करती. अब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है.
0: तो उसको पता है कि यू लाइक हर?
1: मे बी
0: क्या होता है यार, जैसे खुल के मेरे को बताया तूने, पता पता बोला उसको तूने, लाइक खुल के?
1: खुल के नहीं बोला, मतलब बातों बातों में
0: कोई क्लैरिटी नहीं होती है. डायरेक्टली नहीं बोला है तो लड़की मुड़ के बोलेगी, चल मान ले एक सेकंड के लिए, दैट शी गेट्स एंगेज्ड टू समबडी एल्स, एंड उसके बाद आप उसे जाकर कहोगे कि यार तूने तो किसी और से एंगेजमेंट कर ली, मैं तुझसे प्यार करता था. तो अगर वो आपको बोलेगी कि तूने तो कभी बोला नहीं मुझे, ये तो सच है ना, आपने कभी डायरेक्टली तो बोला नहीं. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अब उसे आपसे प्यार है कि नहीं है,
1: अब यही तो जानना है अपन.
0: तो आप जब तक उसे ये नहीं बताओगे दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हर, कैसे जानोगे?
1: मेरे पास तो सारी फीलिंग्स हैं.
0: अरे ये आपको पता है ना, तो फीलिंग्स को सिंगल से डबल करने के लिए सामने वाले को बताना पड़ता है. जैसे आपने मुझे अभी बताया ना कि सब कुछ हो गया लेकिन प्यार करने का टाइम नहीं था, और अब जब बड़ा हो गया हूँ तो आई हैव रियलाइज कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो. क्या आपको भी मेरे बारे में सेम फीलिंग्स है? ऐसे करना होता है.
1: पता है क्या यार, क्या? मैं शुरू से ही फट्टू रहा हूँ. मतलब
0: तो आप जिंदगी भर थोड़ी फट्टू रहना है, बदल सकते हो आप इसको. जस्ट बिकॉज आप आज तक फट्टू थे इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल भी फट्टू रहोगे, समझे? डर लगता है, और अभी तो डर लग रहा है. लड़की किसी और के साथ चली गई ना तो फिर बुरा भी लगेगा, और डर से ज्यादा बुरा फील करने में लगता है.
1: चलो अभी ट्राई करूंगा, अभी मिलेगी एक मैरिज में, मिलना उसने मुझे.
0: अरे वाह, तब तो वो भी गुड लुकिंग लग रही होगी, आप भी हैंडसम लग रहे होगे. चुपके से उसे कोने में ले जाना, एक गोल गप्पा खिलाना, और उसके बाद बोलना कि देख यार इधर उधर की बातें बहुत कर ली, अब कुछ असली बातें कर लेते हैं दिल की, मुझे तुझसे प्यार हो गया, छोड़ दो अपना फट्टू बना अब.
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच.
0: टेक केयर फॉर सेल्फ यार, ऑल द बेस्ट. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही इनकी तरह आपको अभी तक ये पता नहीं है कि डायरेक्टली कैसे अप्रोच करते हैं प्यार में, बिकॉज आप तो फट्टू हो, देन व्हाई डोंट यू डू समथिंग, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई लव यू गाइस सो इनक्रेडिबली मच. सो व्हाइल यू हिट मी अप, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची
1: मिर्ची हॉट माइक। लॉग आउट

0: कंट्रोवर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट

ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको गाना गाना नहीं आता, गाना सुनना तो आता है ना। अगर आपके पार्टनर को इंटरेस्ट है गाना गाने में और अगर वो थोड़ा बहुत सुरीला गा लेता है तो सुन लो ना उसकी कवालियाँ, सुन लो ना उसकी गजलें, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मेरी बेस्टी के रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है। हर पार्टनर, न्यू फाउंड पार्टनर, इज अ फेयरली डिसेंट सिंगर। अब उस बंदे को गजल्स पसंद है, उसे कवालियाँ पसंद है और उसे अच्छा लगता है अरिजीत सिंह के गाने गाना। लेकिन मेरी बेस्टी, जब से मैं उसे जानती हूँ ना, शी इज बीन लिसनिंग टू हार्ड कोर लाइक रॉक एंड कभी कभी पॉप सुन लेती है, बट ये सब उसका सीन नहीं है, कवाली वगैरह। एंड आई टोल्ड हर कि यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुझे उसके साथ गाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ अच्छा सा गा रहा है, ही इज डूइंग अ मेहदी हसन रेंडिशन, सुन ले उसे, तेरे म्यूजिकल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएंगे शायद, यू विल एक्सपैंड योर स्पेक्ट्रम एंड ही विल फील अप्रिशिएटेड। एंड आई ऑनेस्टली फील कि हर रिलेशनशिप में, और प्रॉमिस मैं ये अपने हर एक्स रिलेशनशिप में करती थी, अगर आपके पार्टनर को कोई इंटरेस्ट है जो आपको पर्टिकुलरली एक्साइट नहीं करता है, लाइक वन ऑफ माई एक्सेस यूज टू लव रीडिंग मर्डर मिस्ट्रीज, एंड मेरा जैम नहीं है मर्डर मिस्ट्रीज, बट मैं फिर भी उसकी किताबें बोरो करके पढ़ती थी एंड ही यूज टू गेट सो एक्साइटेड कि यार रोशी किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रही है जो मुझे अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांगली बॉन्डिंग थिंग ब्रो। ट्राई करके देखो अपने पार्टनर के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाना, एंड दैट कैन एक्चुअली बॉन्ड यू टू द नेक्स्ट लेवल। और एक बार नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग हो जाएगी तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, यू नॉट ही पर्सन, उसमें भी काफ़ी एलिवेशन हो जाएगा। एंड वंस दैट हैपन्स, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना फॉर दिस अडोरेबल हैक। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो हिट मी अप बेबी विद योर थैंक यू एंड योर लव एंड वट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

पर्सन इज बेसिकली अ सेपियोसेक्सुअल, अर्थात वो इंसान जो मेंटली ऐसी कॉन्वर्सेशंस करता है कि आपके दिमाग के जो भी 680 ब्रेन सेल्स हैं सब जागृत हो जाते हैं और आपको ऐसे लगता है कि यार दिस इज सो एक्साइटिंग. तो योर ब्रेन इज लिट अप विद अराउजल एंड एक्साइटमेंट. लेकिन फिर वो इंसान जो भी करता है, उसे गुस्सा आता है तो भी यू गेट टर्न्ड ऑन, वो हंस रहा होता है तो भी यू गेट टर्न्ड ऑन, वो आपसे बात कर रहा होता है, आपको जनरल न्यूज़ सुना रहा होता है कि ये देश उस देश पर हावी हो रहा है, आपको तो भी टर्निंग ऑन लगता है, आपसे स्टॉक एक्सचेंज की कॉन्वर्सेशन कर रहा है कि कैसे सेंसेक्स गिरे जा रहा है और आपका ब्रेन टर्न्ड ऑन हुए ही जा रहा है. एंड इस बात पर कोई कैप है ही नहीं. ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में? आई एम टॉकिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आई थिंक हमें गुफ्तगू कर लेनी चाहिए. इट्स सच अ स्ट्रेंज साउंडिंग वर्ड, हाँ, लेकिन हमें गुफ्तगू कर लेनी चाहिए क्योंकि ये क्या माजरा है. आई थिंक इट इज़ वेल बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ मियर सेपियोसेक्सुअलिज्म. ये कुछ और ही बात है भाई. लाइक क्या ये जन्म जन्मांतर का प्यार है? क्या ये ट्विन सोल्स हैं? क्या ये ट्विन फ्लेम्स हैं तो क्या है ये, मुझे आप बताओगे ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? हिट मी अप, लेट्स गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आपका कॉलीग आपके भाई जैसा है, लेकिन घर होते हो जब आप अकेले तो यू हैव डर्टी लिटिल ड्रीम्स अबाउट योर कॉलीग. अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है विच यू जस्ट कांट शेयर विद एनीवन एल्स बिकॉज और किसी को बताओगे तो वो आपको जज करेगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. जल्दी से अपना नंबर भेजो इंस्टा पर या FB पर, मैं पक्का आपको फ़ोन करूँगी और आपकी जो सीक्रेट है ना किसी को नहीं बताऊँगी, सिर्फ आपको रोशिफाई करूँगी एंड बात खत्म. अभी के लिए मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
1: हाय रोशी.
0: आपका कन्फेशन मुझे तो पता है बिकॉज़ वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन इंस्टा, बट मुझे एक बार फिर से बता दो ताकि सबको पता चल जाए कि इस दुनिया में कितनी सारी वीक चीजें हो सकती हैं.
1: तो ये ना मतलब इट हैपेंड सम इयर्स बैक. माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा बर्थडे था तो वो भी आई हुई थी एंड ऑब्वियसली मेरा कजिन भी आया हुआ था. सो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज़ सीक्रेटली ना वो मुझे थोड़ा पसंद था. तो पर
0: थोड़ा पसंद था मतलब
1: बहुत ही पसंद था, लाइक यू नो उसके सपने देखते रहो और इमेजिन करते रहो, अगर ये भाई नहीं होता तो शायद कुछ हो जाता.
0: आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी. करेक्ट. कैरी ऑन कैरी ऑन.
1: तो फिर हम बर्थडे पे थे एंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कजिन के बीच में काफी बातें होने लगी एंड आई थिंक दे रियली कनेक्टेड. अगले दिन मेरा कजिन उसके बारे में पूछ रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पूछ रही है, यू नो आई थिंक रियली कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है ये वो. डिड ही टॉक अबाउट मी? सो आई हैड टू लाई बिकॉज दिस जेलसी इन मी वाज लाइक नो नो नो आई कांट सी देम टुगेदर, क्या पता मैं हो सकती हूँ ना. आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि नहीं यार उसने तो नहीं पूछा, वो तो ऐसे ही लड़कियों से बातें करते रहता है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो पूछ जाओ उसके बारे में. एंड शी वाज प्रीटी हर्ट अबाउट दैट बिकॉज इट वाज लाइक द फर्स्ट गाय शी वुड बी थिंकिंग ऑफ डेटिंग और समथिंग एंड ऑल. तो या
0: बुरा नहीं लगा आपको?
1: अब लगा ना. तो अब हुआ क्या कि लड़के ने भी पूछा, सो आई टोल्ड हिम कि नो वो ऐसे लड़कों को भाव नहीं देती, सो डोंट गेट योर होप्स हाई. तो अभी नाउ रिसेंटली दिस हैपेंड लाइक अ ईयर बैक अगेन, इट वाज माय बर्थडे सो दे मेट अगेन एंड देन दे काइंड ऑफ लाइक दिस होल थिंग गॉट अनरैवल्ड अबाउट बिकॉज बोथ ऑफ देम वर रियली एंग्री विद ईच अदर, टर्न इनटू दिस यू नो कन्फेशन सीन इन माय पार्टी. And because it was my birthday, तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, पर फिर अगले दिन तो अब मेरे से कोई बात नहीं होता. मेरे से पूछा तो मैं झूठ क्यों बोला, मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने क्यों झूठ बोला.
0: Babe, you know, इस सारे चक्कर में if there is one thing that can help you and only one thing, वो सिर्फ रोशिफिकेशन है, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट सी एनी होप फॉर यू हियर माय लव.
2: यू've been रोशिफाइड.
0: If I was to put myself in your shoes, then प्यार तो अंधा होता है पुष्पा. आपसे बात करके बहुत मजे आए मिस्ट्री कॉलर, और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपके दिमाग के 5-6 पेज मिसिंग है, then I think you're the perfect रोशियन. Hit me up on Insta या FB and we will get talking. नाम 6 मिर्ची रोशी, काम 6 आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: हर्षी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले

0: की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 2903।

मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रही हूँ कि जब आप किसी इंसान को मिलते हो और सामने वाला इंसान कहता है दैट दे आर नॉट रियली लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या वो डेट भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दे रियली इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू, वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है दैट वो चाहते हैं दैट यू बी टुगेदर, लेकिन उस इंसान के टर्म्स पर जहाँ उसे आपको कमिटमेंट ना करनी पड़े इमोशनल या अदरवाइज. और अगर कोई आपसे ये बात कह रहा है देन माई सजेशन टू यू इज थोड़ा सा पॉज करके सोचो, इज दैट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, समबडी हु इज नॉट विलिंग टू कमिट, एंड इफ यू आर ओके विद इट गो अहेड एंड डू इट, जैसे मैंने किया. बट द एंड रिजल्ट इज काइंड ऑफ पेनफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर वो इंसान जो फुल कमिटमेंट लेकर इस रिलेशनशिप में घुसता है. और अगर आप ऑलरेडी इसे फेस कर चुके हो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, लेट मी टेल यू वन फाइनल थिंग, जिसके पास लव है उसके पास सब है.

0: जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab, mirchi khaya.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट।

श्रेया के साथ ओनली

की आवाज है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म्स की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी। फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं। आगे आगे सुनो

से गाना विच इज पिक्चराइज ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जींस पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोरदा की आवाज़ ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज़ इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोरदा को लाया गया, और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: परसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक। लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।

जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिखलाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले

ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इसमें देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा व्हाई पीपल से, बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म के हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे

0: रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हीरो की हीरोइन भी बन चुकी हैं और हीरो की माँ भी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म शक्ति। राखी जी को सबने बेहद मना किया था कि ये फिल्म बिल्कुल मत करो, लेकिन राखी जी मानी नहीं। वेल, शक्ति में थी स्मिता पाटिल, बच्चन साहब, दिलीप कुमार एंड राखी जी। राखी जी जो बच्चन साहब के ऑलरेडी लव इंटरेस्ट बन चुकी थी इन द फिल्म कभी कभी एंड क्वाइट फ्यू फिल्म्स, वो ये फिल्म में बच्चन साहब की माँ बनने वाली थी। लोगों ने मना किया कि भाई मत करो ये फिल्म, लेकिन राखी जी को पता क्या इंटरेस्ट किया? दिलीप साहब की वाइफ बनना इन दिस फिल्म। सो शी सेड कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, इस बहाने मैं दिलीप साहब की बीवी का रोल तो कर लूँगी। तो उन्होंने ये फिल्म शक्ति करी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना लेकर के आई थी मैं। मेरा नाम है श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे RJ Shreya with love, that's my handle। तो बस गाने सुन करके वापस आओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ।

अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी। तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफ़ी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बातें मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

सिर्फ मिर्ची पर।

सैयद साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफ़ी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल ख़त लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो ख़त तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक ख़त था। एंड इस ख़त को पढ़ लिया था रफ़ी साहब ने, और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊँगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

उसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप हुशरेया के साथ, ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। द ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। अब ये फिल्म करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वाज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहा के साथ ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

0: जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

صرف مرچی پر۔

रानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी लेकिन इट वाज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ड फिल्म फेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: किशोर सिंह की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आबू श्रेया के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ आज वाला ना, किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव। तो इस आवाज़ के पीछे का चेहरा देखना हो तो वहाँ आ सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी हो वार्तालाप तो वो भी कर सकते हो। गुड नाइट।

कहीं दूर, जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

with the beat.

0: जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: एलएलसी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest

0: दिल्ली स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Letting go का मतलब communication तोड़ना नहीं होता. आइए इस बात को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: इसी से रिलेटेड एक सवाल आया सिस्टर, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कहते हैं कि क्षमा करना और भूल जाना दो तरफा होता है कि नहीं, लेकिन कब तक किसी की इनसेंसिटिविटी अपमान और दुर्व्यवहार को सहन किया जाना चाहिए?
4: दो तरफा जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हमेशा दूसरा क्या करेगा उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता.
3: अच्छा,
4: हम चाहेंगे दो तरफा हो. समझो, मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये बात नहीं पकड़नी, मैं आकर के आपको सॉरी बोलती हूँ
3: जी,
4: तो मैं चाहूंगी आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओ
3: जी,
4: है ना. मेरे को लगता है मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं, आज मैंने रियलाइज किया कि आपने आज एक कोट ही पढ़ा कि ये तो अपने को फ्री करना है. तो मैंने सारी हिम्मत जुटा करके आई केम अप टू यू एंड आई सेड आई अपोलोजाइज, अभी लेट गो करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी उस चीज के लिए रेडी हो. तो हम क्या करें?
3: अच्छा,
4: फर्स्ट स्टेप है क्या हम उसको लेट गो करना चाहते हैं, दैट इज माई फर्स्ट स्टेप. सो आई डिसाइड कि नहीं, मुझे तो लेट गो करना है, मुझे इसको और होल्ड ऑन नहीं करना है. इसको और होल्ड ऑन करने से आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट पेन. सो आई, दैट द फर्स्ट थिंग कि मुझे लेट गो करना है. सेकेंड, लेटिंग गो का मतलब क्या है? आई कम अप टू यू, मैं अपनी ईगो को साइड में रखकर आई कम अप टू यू, आई स्टार्ट टॉकिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात नहीं कर रहे होते एंड आई मेक दिस क्लियर कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं पकड़ा हुआ है. थर्ड, आई गिव यू इनफ स्पेस एंड टाइम आप अपनी हीलिंग कर सके. एंड फोर्थ, मैं आपके प्रति पॉजिटिव गुड विशेस मन में भी रखती हूँ, रेडिएट भी करती हूँ, जो आपकी हीलिंग में कंट्रीब्यूट करती है.
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भरोसा टूटता है, फॉरगिवनेस की बात आती है, और बहुत जरूरी है कि भरोसा जब टूटता है सबसे पहले बातचीत बंद हो जाती है. और आप कह रही है बातचीत, कोशिश करो कि बातचीत करो, जाके उसको समझाओ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. और दूसरी चीज आपने बहुत अच्छी कही कि उसके तरफ पॉजिटिव विशेस भेजो, शायद उससे उसकी एनर्जी और बढ़ेगी और शायद उसको समझ में आएगा और शायद वो नेक रास्ते पे चलेगा.
4: आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये बातचीत बंद हो जाती है. पहली चीज क्या होती है, जैसे किसी ने कुछ बोला या कुछ किया, हम हर्ट होके हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो बहुत डैमेजिंग होता है. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बाहर बातचीत करना बंद करते हैं.
3: हाँ, लेकिन अंदर में जारी है,
4: सबसे ज्यादा उससे बात कर रहे होते हैं.
3: अरे वाह, क्या खूबसूरत बात कही आपने.
4: जिस दिन आप बाहर जिससे बहुत बात नहीं कर रहे होते हैं ना,
3: उसके बारे में ज्यादा सोच रहे होते
4: हैं आप, ज्यादा उससे बात कर रहे होते हैं. और क्योंकि आप थोड़े से दुखी हैं, तो आप जो बात भी कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती है.
3: हाँ बिल्कुल,
4: आप कह रहे होते हैं ये ऐसा है, ये बार बार ऐसा. एंड यूजली इशू के ऊपर नहीं बहुत सोच रहे होते हैं,
3: उसी के बारे में सोच, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में.
4: व्यक्तित्व, तो वो वाइब्रेशन तो जाएगा ना. अगर आपका स्पाउस है या आपका कोई कलीग है, तो वो साइलेंस जो हो जाता है ना, घर में एक दिन बात नहीं हो रही, दो दिन बाद, वो साइलेंस बहुत डैमेजिंग होता है. वो साइलेंस जो है वो बहुत दूर करता है. और वो साइलेंस में है क्या एक्चुअली? ईगो ही तो है ना.
3: बिल्कुल बिल्कुल.
4: ईगो क्या कहते हैं, मैं क्यों, Why do I apologize? मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती तो उनकी थी, वो रियलाइज करे. और कई बार ये दो दिन, तीन दिन, और कई बार हम एक छत के नीचे रह रहे होते हैं. It's very little conversation.
3: बिल्कुल सही कह रही हैं.
4: तो हम पहले तो क्यों लेट गो करते हैं और हम क्यों पहला कदम बढ़ाएं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना. क्या पढ़ी है मुझे? Why should I do it?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कम्युनिकेशन ब्रेक करना अक्सर डिसकंफर्ट का साइन होता है, आइए जानते हैं क्यों।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बात

0: बातचीत बंद हो जाती है और वो होनी नहीं चाहिए सिस्टर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हो जाता है। और मेरे खुद के परिवार में, दोस्तों में मैंने देखा है, मेरी मम्मी और मेरा रिश्ता भी ऐसा था, हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे, फिर थोड़े दिन में वापस बातचीत शुरू हो जाती थी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि बातचीत बंद है क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मुझे हर्ट किया और आपको लगता है कि आपने मुझे हर्ट किया, तो और ज़्यादातर ईगो ही होता है कि मैं क्यों बोलूँ उसने मुझे हर्ट किया, और उसको उनको लगता है कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझसे बदतमीजी से बात की। तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए टू गेट ओवर दिस?
1: एक ही लाइन अपने को याद दिलानी होती है, बहुत मुश्किल नहीं है, दैट दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर मी।
0: दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी
1: है। इफ इट इज इम्पोर्टेंट।
0: हाँ, मैं यही, मेरा अगला सवाल यही था कि कभी कभार भी बोलता है नहीं ये मेरे लिए मायने ही नहीं रखता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये बात इतनी बुरी हो जाती है, यहाँ तक पहुँच चुकी होती कि इसके अब जीने या मरने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कई बार इंसान ऐसा भी बोल देता है,
1: बाहर हम बोल देते हैं, पेरेंट भी कई बार बच्चों के लिए बोल देते हैं, पर डिसाइड कैसे करना होता है कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो। जैसे कभी कभी इसको स्मॉलर लेवल पर ले, हम ये कहते हैं नहीं मेरे को नहीं बात करनी इससे सारा दिन, नहीं करनी नहीं करनी, पर उस दिन हम बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी नहीं होते, थोड़ा सा आपका मन बार बार वहां जा रहा होगा, हर बार आपका फोन बजता है आपको लगता है उसका है, हर बार कोई मैसेज आता है उसका है, फिर आपको लगता है आधे ओके बिकॉज समवेयर तो वो रिलेशनशिप है कि नहीं है, सो यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, लेकिन नेचुरली हम कंफर्टेबल तभी होते हैं किसी भी रिश्ते में जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
0: होती है,
1: ठीक हो रहा होता है। कभी कभी हम सेपरेट भी हो सकते हैं, हम डिवोर्स लेकर के सेपरेट भी हो सकते हैं, तो भी जरूरी नहीं है हम कंफर्टेबल हो।
0: होता है कई बार,
1: हमें लगता है कि हम अलग हो जाएंगे ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपके जीवन में कि हम नहीं रिजॉल्व करते, हम अलग हो जाते हैं, देन आल्सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अलग होने के बाद भी बहुत कंफर्टेबल है। और कई बार लोगों को ये भी बहुत मुश्किल लगता है कि आप अलग हो गए तो भी मेरे मन में उसी के विचार और वही बातें और वो सब क्यों नहीं जाता, मेरे मन से निकलता क्यों नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल सेपरेशन ना।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भारत वर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर।

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श मिले।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरणामृत गोमुख से गंगा सागर तक युगों युगों से श्रद्धालुओं को मुक्ति दिलाता रहा है।

0: Mirchi Recharge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: तो इस बारे में तुम मेरे एक कॉलीग हैं, तो दोस्त भी हैं, उनके और उनके वाइफ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, डिवोर्स की बात आ गई। वो वाइफ कह रही मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, आई विल नॉट लेट यू मूव अहेड इन योर लाइफ, मैं देखती हूँ कि तुम अब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि रहना तुम्हारे साथ है नहीं, डिवोर्स मैं तुमको दूंगी नहीं। और नाउ दिस फ्रेंड कॉलीग ऑफ माइन स्टार्ट लाइकिंग समबडी एल्स, वो कहते नहीं अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए जब बात यहाँ तक हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें आगे भी नहीं बढ़ने दूंगी?
2: वो तो रिवेंज जैसा हो जाता है ना, जब कोई, जैसे हमने पहले कहा, जब कोई बहुत हर्ट होता है ना, सो दे गो टू दैट एक्सट्रीम
1: कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगी,
2: कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगी।
1: तो अब ऐसे इंसान को, क्योंकि मैं दोनों को जानता हूँ, अब मैं क्या कहूँ उसे,
2: हमें चाहिए क्या? अगर हम देखो, ये भी एक फिर इसके अंदर कर्मा का लॉ भी आता ही है, वो कहते हैं ना सुख दो सुख लो, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम किसी को दुख देते जाते हैं
1: तो हमें नहीं मिलेगा।
2: ये होता ऐसा है कि हम सोचे कि फिर हम अपने से मजे में जी ले, वो चीज उस व्यक्ति को कंफर्टेबल होती नहीं है। एक्चुअली उस जो पर्सन है, जो उनकी वाइफ है, शी मस्ट ऑल्सो बी वेरी मिजरेबल, वो कोई खुश नहीं होंगे, पर उनको कोई दूसरा तरीका आता नहीं है, उनको कोई दूसरा तरीका आता नहीं, नॉर्मली किसी को भी नहीं आता। तो मेरा जो इंस्टिंक्ट होता है ना कि जो आपने मेरे साथ किया
1: मैं भी तुम्हारे
2: वो
1: साथ
2: मैं आपके साथ करूंगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसा फील होता है। वो ये कर भी लेंगे, पर आपको क्या लगता है कि अगर वो दर्द में रहेंगी और फिर वो ऐसा करेंगी, सो विल शी बी ओके? Will it give a peace of mind?
1: Probably not.
2: So वो सफर भी कर रही हैं, and that is how, see, कुछ समय पहले ये होता है, अगर ये healing नहीं हो ना, hurt है ना हम, और आप जिम्मेवार हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी healing तभी है जब मैं आपको hurt करूँगी। And that is why it is so important to heal yourself or somebody. Take somebody's help to heal yourself. क्योंकि एक बार जो मुझे कई बार ये सीन नहीं भूलती है, पाकिस्तान में पेशावर में एक स्कूल पर अटैक हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे, टेररिस्ट ने आकर के अटैक किया, दे स्टार्टेड शूटिंग, उसमें से बहुत छोटे बच्चे थे जिन्होंने बहुत नज़दीक से अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा, फियर देखा, टेरर देखा, सब कुछ देखा उन्होंने। अब वो बहुत डर गए, उसके बाद वो जो मीडिया थी वो उनके इंटरव्यू ले रही थी, उसमें से एक इंटरव्यू बार बार टीवी पर आ रहा था, यू नो हाउ दे कीप फ्लैशिंग द सेम थिंग अगेन। उसमें एक बच्चा था जो एक लाइन बार बार कह रहा था, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन सबको तबाह कर दूंगा, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन सबको तबाह कर दूंगा। नाउ उस इनोसेंट एज में उसके साथ कुछ हुआ, कुछ हुआ, उसने बहुत हर्ट क्रिएट किया। अगर इस बच्चे के किसी ने हीलिंग नहीं करी, इसने खुद नहीं करी और किसी ने नहीं करी, आपको क्या लगता है ये बच्चा बड़े होकर के क्या चांसेस है?
1: बुरे राह पे जाएगा।
2: ऐसे ही टेररिस्ट नहीं होता कोई, एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी। आज वो इनोसेंट है, लेकिन आज किसी के साथ कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, फिर वो हर्ट, एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, फिर कब आप उसका हिस्सा बन जाते हो
1: पता नहीं चलता,
2: आपको पता नहीं चलता। सो बेसिकली जो उस हस्बैंड ने विमेन के साथ किया वो राइट नहीं था, दैट वाज व्हाट मेड हर मिजरेबल, बट आज वो उससे अलग करने के जगह क्या चूज कर रही है,
1: अपने आप को भी हर्ट कर रही है और सामने वाले को। एक आपने
2: ये चीज आप हमें हमेशा समझना है कि अगर हम हर्ट है तो चाहे हमारा लव्ड वन भी हमारे सामने, हमारा बच्चा भी है, पर अगर हम दर्द में हैं तो हम उनको दर्द ही देंगे। फिजिकल चीजों में ऐसा हो सकता था, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैं आपको बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, मैंने बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, मैं अपने बच्चे को दे देता हूँ, सो मेनी थिंग्स, ये मुझे नहीं मिला मैं आपको दे देता हूँ, मुझे ये नहीं मिला मैं आपको दे देता हूँ, पर प्यार खुशी में ऐसा नहीं होता,
1: जो मेरे पास है वही मैं दे पाऊंगा,
2: जो मैं हूँ वही आप तक रेडिएट होगा। तो अगर मैं मिजरेबल हूँ, समझो कोई घर में मदर है, मैं मिजरेबल हूँ अंदर किसी भी कारण से, मैं वो ही अपने परिवार को रेडिएट कर।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मूव ऑन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है खुद को हील करना। आइए समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप फील ही नहीं कर रहे हैं तो हील कैसे होंगे? आइए इस सच को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने एक और अच्छी बात की कि अगर जब मैं हर्ट हूँ, जब मैं ऐसे स्थिति में हूँ जहाँ मुझे लगता है किसी ने मेरा भरोसा तोड़ा या गलत काम किया, उसकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजो आप। लेकिन कभी कभी लगता है यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं हर्ट हूँ, मैं क्यों पॉजिटिव एनर्जी भेजूँ उसकी तरफ?
4: वो तो बहुत बात का स्टेप है। पॉजिटिव एनर्जी, आप हर्ट हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेज सकते। हाँ। आप बीमार हैं तो आप किसी को ठीक नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल,
4: आप बीमार हैं।
3: हाँ, नहीं,
4: और आप कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल,
4: तो बीमार को पहले क्या करना पड़ेगा?
3: खुद ठीक होना पड़ेगा।
4: आप सीधा सोचें कि मैं उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजूं। ये ना कहने में होता है कि हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें, ये कोई भेजने की चीज नहीं होती। जैसे घर में अगर कोई स्वस्थ है और उसको सामने दिखाई दे रहा है कोई बीमार है, तो वो नेचुरली उसको कहता है ना, लाओ मैं कर देता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए कर देता हूँ। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो सामने से कोई कहता है लाओ मैं आपको उठा करके दे देता हूँ। ऐसे ही अगर कोई अंदर से दुखी है, वो ये भूल जाए उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, वो बात की बात है। वो पहले ये सोचे कि मुझे अपने को कैसे ठीक करना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: गिला शिकवा रखना या छोड़ना, ये आपकी मर्जी होती है। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहुत महीने साल हफ्ते गुजर जाएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जब तक हम ये जरूरी है कि जब तक हम उस हर्ट से नहीं निकले हम दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे।
1: नहीं दूसरों को फॉरगिव नहीं करना है, पहले किसको फॉरगिव करना है?
3: खुद को करना है।
1: जैसे मैंने खुद को फॉरगिव किया, आई एम रिलीजिंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट पेन, तो फिर दूसरे को फॉरगिव करने के बाद कहाँ से आई?
3: बट अक्सर तुम कहते ना आई फॉरगिव यू,
1: वो हम कहते हैं क्योंकि हमें थोड़ा माइटी फील होता है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि देखो एक बात हम समझे, अगर कोई कमजोर है ना, वो हमेशा अपनी दर्द का जिम्मेवार किसी और को ठहराना चाहता है। एंड ओनली व्हेन वी कम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ हम रियलाइज करते हैं कि लोग बाहर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके मन में घुस करके आपको दुखी नहीं कर सकते। सो यू हैव चोजन टू बिकम प्रिजनर ऑफ योर माइंड। घुस सकते हैं आपके मन में। आप अभी बात कर रहे थे कि गाड़ी चलाते कभी कभी तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज्यादा आ सकता है, कितनी भी कोई गलत गाड़ी चला सकता है। लेकिन जो आप अभी जो सारे के सारी बातें सुना रहे थे, क्या क्या मन में चलता है उस समय?
3: इरिटेशन।
1: नहीं, थॉट क्या था?
3: क्यों ऐसा क्यों कर रहा है,
1: ऐसे क्यों कर रहा है, उसके कारण
3: मेरे गुस्सा आ रहा है,
1: मेरी जान जाएगी, उसके कारण उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे भुगतना पड़ेगा। वो तो आपके मन में घुस के नहीं है थॉट क्रिएट कर रहा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड यू हैव टू ब्लेस देम। आप भी ठीक ठाक घर पहुंचो, आप हेट भी कर सकते हो, आप उसको ब्लेस भी कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं, ये चॉइस है। कितना भी डिफिकल्ट आपको अभी लग रहा है, पर चॉइस है कि नहीं है उस समय पर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर इंसिडेंट के पीछे एक पूरी सिचुएशन होती है, आइए उस पर्सपेक्टिव को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी बड़ा मुश्किल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है मैं एक बार गाड़ी चला रहा था दिल्ली के सड़कों पे और मथुरा रोड पे था, और सामने मेरे सामने एक और गाड़ी थी उनके ठीक पीछे था, और मेरे सामने जो गाड़ी थी उसके सामने एक स्कूटर पे एक मियाँ बीवी शायद जा रहे थे, और उन्होंने हल्के से उनको टच करके वो लोग गिर गए, और गिर करके ये भाई साहब जो हैं जो गाड़ी चला रहे थे वो निकल गए। अब उनके पीछे मेरी गाड़ी थी, तो मैंने जब ये सीन देखा मैं गाड़ी से उतरा और मैं उनको हेल्प करने गया। उनको लगा मैंने उनको धक्का दिया है, तो वो मुझे ही पकड़ के मुझे मेरा कॉलर वॉलर पकड़ा और बोला कि ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। तो क्या होता है कि जब आप कह रहे हैं कि आप उनको ब्लेस करो, आप बोलो एक्सेट्रा, कभी कभी आप गलत सिचुएशन में ही फंस जाते हैं। मैं मदद करने जा रहा हूँ, उल्टा वो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, तो ऐसे में क्या करें आप?
4: हमारी गुड विशेस थी, हमने उनको हेल्प करी, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अभी उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो अभी थोड़े से
3: हिले हुए हैं,
4: वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने समझा आपने ऐसा किया है, आपने क्या करना है, आपने हेल्प करी और आपने उनको एक्सप्लेन किया कि आई वॉजंट द पर्सन। देखो, जैसे मैं अभी आपसे बात करते करते गिर जाऊं, तो आप पहले क्या करेंगे?
3: आपकी मदद करने जाऊंगा।
4: आप मुझे उस समय समझाने नहीं जाएंगे कि आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। भले मैं अपनी गलती से गिरी, मैं सड़क पर चलते चलते मोबाइल देखते देखते मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैं गिर गई।
3: पहले आपको उठाएंगे,
4: आप सबसे पहले मुझे उठाएंगे, मेरे को देखेंगे कहीं चोट तो नहीं लगी। जब आप मेरा ध्यान रख लेंगे उसके बाद मुझे आप
3: समझाएंगे।
4: अगर जिस समय मैं दर्द में और आप मुझे समझाना शुरू कर दें कि आपको देख के नहीं चलना चाहिए, फोन पे बात करते हुए चलना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, मुझे आपकी बात समझ में आएगी?
3: नहीं आएगी।
4: वो उस समय किस में है?
3: दर्द में।
4: उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, पर इतना हमें तो समझ में आ रहा है ना कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो हम गए उनको हेल्प करने के लिए और हमने हेल्प किया। हमारी वो क्वालिटी है हेल्प करना। सड़क पर आजकल लोग नहीं करते हैं, आजकल वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं, वो लगते हैं कहीं पुलिस केस ना फंस जाए, हम ना उसमें फंस जाए। आपने एक अच्छा कर्म किया। जब उनको ये चीज रियलाइज होगी कि ये आपने किया, उसके कारण उनको उनकी जान बची, फिर वो क्या करेंगे?
3: फिर वो शायद बहुत आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन मैंने जो सिचुएशन पूछा था कि वो उस समय वो देख नहीं पा रहे थे, वो तो देख रहे थे कि भाई साहब ये है, इसी ने मुझे गिराया है, इसको मारो पहले। और मैं कह रहा हूँ मैं तुमको, तो वो सुन नहीं रहे थे, तो मुझे दो चमाटे पड़े भी, और मैंने कहा छोड़ो भाई आपसे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर गाड़ी से लेके निकल गया। So, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी कभी स्थिति जो होती है वो हमेशा आइडियलिस्टिक नहीं होती है।
4: नहीं होती आइडियलिस्टिक स्थिति, आइडियलिस्टिक नहीं होती है। नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: क्या कोई सिचुएशन आपके रियल इमोशंस को ओवरपावर कर सकती है? आइए एक्सप्लोर करते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: एक्चुअली जो आप कह रही थी कि कभी मैं किसी को देखता हूँ ऐसी स्थिति में, तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही होता है कि उनको हेल्प करूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था, यार आज ऐसा नहीं हो जाए, क्या करें। तो ये कश्मकश चलती रहती। कई बार मैं उतरता हूँ गाड़ी से, और कई बार जब भीड़ भड़ाका दिखता है मुझे, मैं नहीं रहता।
6: हमें कई बार ना सिचुएशंस को इतना पकड़ के नहीं रखना चाहिए लाइफ में, हमें उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करके एक बार ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जैसे उन्होंने, इट इज जस्ट वन अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो गिरे थे, वो दर्द में थे, वो परेशान थे, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सारे के सारे जिनके साथ एक्सीडेंट हो रहा है
5: वो हर बार ऐसा नहीं
6: करने वाला।
5: लेकिन जब वो सेम स्थिति मेरे साथ फिर हो तो मुझे तो अपनी गलतियों से ही सीखना है ना।
6: लेकिन आपको उस गलतियों से एक नया एक्सपीरियंस बनाना है ना। वहीं तो हमने उस चीज को डाइसेक्ट, हमने क्यों उस प्रॉब्लम को देखा, हमने समझा कि वो उस समय किसमें थे। फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट चेंजिंग ट्वीकिंग अ सिचुएशन लिटिल बिट। आजकल हम देखते हैं कि कई बार डॉक्टर्स के साथ वायलेंस बहुत हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डॉक्टर्स के साथ कई बार वायलेंस हो जाता है, जो पेशेंट्स की फैमिली है वो वायलेंट हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स बहुत फियर में रहते हैं। किसी एक के साथ कहीं पर केस हो जाता है तो उनको एक डर रहता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो पेशेंट की फैमिली है वो वायलेंट क्यों हुई थी उस समय पर, बिकॉज किसी का कोई है, मरने पर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना सारा जीवन फियर में बिताएं और अपना प्रोफेशन छोड़ दें,
5: बिल्कुल नहीं है।
6: वो डॉक्टर ये भी तो चूज कर सकता है ना कि किसी भी समय मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, किसी भी समय वायलेंस हो सकता है, मैं नहीं करता, मैं नहीं लोगों को बचाता, वो ऐसा करेगा?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं भाई जब तक आप हमारी सेफ्टी नहीं इंश्योर करेंगे तब तक हम ओटी में नहीं जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएंगे, हम किसी की मदद नहीं करेंगे, हॉस्पिटल क्लिनिक्स नहीं खुलेंगे, तो ये भी एक तरह का प्रोटेस्ट होता है।
6: तो आप सेफ्टी इंश्योर करेंगे, आप पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करेंगे, पर आप वो करना तो नहीं छोड़ देंगे ना।
5: बिल्कुल,
6: आप पैनिक बटन्स लगाएंगे, आप सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे, आप पुलिस और बढ़ा देंगे, आप सब कुछ करेंगे, बट क्या आप एक एक्सपीरियंस के कारण वो छोड़ देंगे?
5: बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल आप ले रही है उसका, उनका प्रोफेशन है लोगों की मदद करना, मेरा प्रोफेशन सड़कों पे लोगों को उठाना नहीं है।
6: आपका प्रोफेशन नहीं है, पर मदद करना आपकी एक नेचर है,
5: आदत है,
6: उसके लिए आप करते थे।
5: बिल्कुल।
6: लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो प्लीजिंग नहीं था।
5: हाँ।
6: जैसे उनके साथ कोई एक इंसिडेंट हुआ जो प्लीजिंग नहीं है, क्या वो प्रोफेशन छोड़ देंगे? नहीं
5: छोड़ेंगे।
6: आपको हेल्प करना छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये आपकी एक चॉइस है।
5: चॉइस है, तो हर बार मैं सोचता हूँ।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Morning. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: हेल्प करते रहना एक रेयर क्वालिटी है, इसे कभी मत छोड़िए। आइए समझते हैं क्यों।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: लेकिन जैसे मेरे मेरे कजन है, वो कहते हैं कि अगर घोड़े की लात के बाद भी तुम नहीं समझे कि घोड़े के पीछे नहीं खड़ा होना है तो बेवकूफी तुम्हारी है। तो एक बार अगर तुम्हारे साथ बुरा हो गया, उसे सीख लो और आगे बढ़ो। और आजकल की जो आजकल की दुनिया में जो हम जी रहे हैं ना, कलयुग जिसे कहते हैं कि लोगों की मदद करने जाओगे खुद ही पिटोगे। तो एक बार अगर मेरे साथ हो चुका है तो मैं एक बार दो बार तीन बार सोचता हूँ यार, अब मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
5: आप और थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, आप किसी पुलिस प्रोफेशनल को बुला सकते हैं, आप चार लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैं वो चीज करूं कि उनका वैसा रिएक्शन नहीं हो, वो उस चीज को गलत नहीं ले। पर आप क्या कह रहे हैं, मैं मदद करना छोड़ दूं। जैसे वो डॉक्टर कहे कि मैं पेशेंट को ट्रीट करना बंद कर दूं। एक है हम इंश्योर करें कि कैसे वो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट जो है वो और सेफ हो सके। एक है हम ये इंश्योर करें कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम हेल्पिंग समबडी, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो एंड हाउ आई कैन टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। और एक है कि मेरे साथ अगर एक बैड इंसिडेंट हो जाए तो मैं वो करना ही छोड़ दूं। एक बार साइकिल से गिर गया तो मैं साइकिल चलाना ही छोड़ दूं। मेरा एक बार गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो मैं गाड़ी चलाना ही बंद कर दूं। और फिर उसमें मैं ये एग्जांपल दूं कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे सीख जाना चाहिए था ना, कि मैं गाड़ी चलाता हूं तो एक्सीडेंट होता है तो फिर मुझे दोबारा कभी चलानी नहीं चाहिए। बट हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम कहते एक बार जो हुआ उससे आप सीखो कि वो गलती दोबारा नहीं हो। पर हम ये थोड़ा ना कहेंगे बच्चे आप साइकिल चला ही नहीं सकते, आप दोबारा साइकिल चलाओ ही नहीं। ये तो एक फिजिकल चीज की बात है, हम तो अच्छे अच्छे गुण को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेल्प करने की क्वालिटी, इट्स अ रेयर क्वालिटी टुडे, इट्स अ रेयर क्वालिटी। और आप अगर अनजान लोगों की भी जाकर के मदद कर रहे हैं तो कितनी डिवाइन क्वालिटी है। तो ये इंश्योर करने की जगह कि हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो, आई एम चूजिंग कि आई विल नॉट हेल्प अदर्स ओनली। फिर मैं ये सोचूंगा तो फिर मैं अपनी फैमिली को भी वो सिखाऊंगा, फिर वो भी आके सिखाएंगे, तो फिर एक दिन तो ऐसा हो जाएगा कि हम किसी की हेल्प ही नहीं करेंगे।
4: तो आप कह रही हैं कि हेल्प करो, पिट जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हेल्प करने की कोशिश जरूर करो।
5: नहीं आपके साथ एक बार कुछ हुआ, आप कुछ ऐसा करें कि दोबारा वो चीज रिपीट नहीं हो। आप उस समय पर पुलिस, नियरेस्ट पुलिस को भी बुला सकते थे, आप लोगों को भी बुला सकते थे, आप बहुत कुछ और कर सकते थे जो आपको लगा शायद आपने उस समय नहीं किया। आप अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी उस समय ले लेते, यू नो समटाइम्स टू एन एक्सटेंट हमें दिखाई दे रहा होता है कि कोई एक्सीडेंट है, हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं, चलो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, हम कहते हम नहीं, पर हम वो भी नहीं करते हैं। हम वो भी नहीं करते।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला। तुम्हारे साथ में यूर ऑफिशियली ट्यून इनटू मिर्ची मॉर्निंग्स। आज है रक्षाबंधन, वो ब्यूटीफुल फेस्टिवल जहाँ पर सिस्टर्स गेट अ राखी, ब्रदर्स गेट एन इमोशनल स्पीच और फिर दोनों मिलकर अमेज़न पे गिफ्ट का लिंक भेजते एक दूसरे को। लेकिन ऑनेस्टली यार, राखी इज नॉट जस्ट अबाउट भाई मेरी रक्षा करेगा, इट्स अबाउट दैट वन पर्सन हु विल रोस्ट यू मर्सिलेसली, स्टील ऑल योर फूड, एक्सपोज योर चाइल्डहुड एम्बैरेसिंग स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। लेकिन द सेकंड समवन एल्स मेसेस विथ यू, तब वो सामने खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है कि एक्सक्यूज मी, वो जैसा भी है या जैसी भी है मेरा वाला है, उसे मेरे अलावा कोई ट्रोल नहीं कर सकता, कोई रोस्ट नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। और अगर तुम फिलहाल फैमिली से दूर हो, टुडे इज योर रिमाइंडर, कॉल दैट सिबलिंग, कजन, बेस्टी, जिसको भी तुम राखी से रिलेट करते हो, चाहे वो तुम्हारा चोजन फैमिली मेंबर हो या फिर गॉड गिवन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया और गिफ्ट का स्क्रीनशॉट भेजना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, वी गॉट अमेजिंग म्यूजिक कमिंग अप, ढेर सारी मस्ती एंड योर मॉर्निंग डोज ऑफ अपडेट्स अलोंग विद माय बैंटर विद यू। तो अभी जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपकाए रखो एंड गो एंड फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, you're listening to Priscilla on Mirchi Mornings. और चलो अब देखते हैं मदर नेचर का मूड आज कैसा है. राइट नाउ वी सिटिंग एट 68 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है 71 डिग्रीज फारेनहाइट तक. यानी कि ह्यूमिडिटी का वो क्लासिक देसी लॉजिक, टेम्परेचर कुछ और होगा, बॉडी को कुछ और फील होने वाला है. 11 बजे तक क्लाउड्स थोड़े से ब्रेक लेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग पार्टली क्लाउडी कंडीशंस. आज का टेम्परेचर जो है उसका रेंज है 67 से लेकर 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक, लेकिन फील होने वाला है 68 से लेकर 84 डिग्रीज फारेनहाइट तक. कल का हाई था 78 डिग्रीज फारेनहाइट, आज का हाई पहुंचेगा 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक. सो आज थोड़ा सा वार्मर, थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिक लगने वाला है. एंड गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन इज 0 मिलीमीटर्स. कल जो 62 मिलीमीटर्स की बरसात हुई है उसके बाद बादल जो है वो आज छुट्टी मना रहे हैं रक्षाबंधन की. लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट हेड्स अप है, फ्लड वॉच है विद कंडीशंस एक्सपेक्टेड अराउंड 12 PM. और जल्दी से तुम्हें याद दिला दूं, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. ये कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर जिसमें पार्टिसिपेट करके तुम जीत सकते हो कुछ अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स कर्सी नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. फटाफट से अपना व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो राखी RAKHI along with your full name and bhej do se 9033 mirchi par, that's 9033 647 244, and to mujhe dm bhi kar sakte ho. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS, Instagram or X par, in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Check out their festive special offers going on, 22 carat gold and diamond jewelry, ya phir visit karo viranijewelers.com par. And abhi mirchi dar bangers ka time hai only on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla, stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Milci. Iskrabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
2: संतोष। संतोष
1: संतोष
2: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं।
2: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे लिया है।
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
2: डू? I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. My name is Priscilla, and this is Mirchi Mornings. And do you know India has finished fifth at the 2026 Women's Hockey World Cup after beating Germany 3-1? And this is particularly big because it's India's best finish in 52 years. Yes, you heard me right, 52 years. Our last best finish was way back in 1974 when India came fourth. And what a finish, man. Ishika Chaudhary opened the scoring in the 42nd minute, and then Navneet Kaur said, okay, ab meri bari hai, scoring twice in the 44th and the 47th minute. India ne miss out kiya hai on the semi-finals after that goalless 0-0 draw with Australia. Lekin instead of sulking, they came back and absolutely owned the fifth place match. And that's the kind of comeback we all love. है ना, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, बस अगले क्वार्टर की तैयारी शुरू हो चुकी है. एंड स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट डिजर्व अ सेलिब्रेशन, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर चल रहा है तनिष्क पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, और वहां पर तुम्हें मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस. अगर अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना चाहते हो तो फटाफट से अभी के भी वहां पर पहुंचो. एंड इफ यू हैव एनी ओल्ड गोल्ड लाइंग इन योर लॉकर एट योर होम, उसे लेकर जाओ. एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन वहां पर मिल रहा है तुम्हें. टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड. तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है अभी फिलहाल, चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Nanak Food presents Mirchi Karega Bandhan Pura.
1: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर. Let's find out क्या नाम है उनका. Hello.
2: Hi, how are you?
1: I'm good. How are you?
2: I'm good and my name is Archil.
1: Hi, Archil.
2: Yeah, excitement है. राखी की तैयारी है. Special bond होता है brother sister का. So just very excited. ये weekend पूरा celebration रहेगा दो तीन दिन.
1: So आपके भाई का नाम क्या है?
2: मेरे भाई का नाम सुमीर है.
1: सुमीर. और yes. आपके साथ में है या वो इंडिया में है?
2: वो यहीं पर है, लोकली है. सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर.
1: तो कैसे आप मनाते हो हर साल?
2: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है. मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, साथ में बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं. तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास्ट में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती हैं, वो सब रिवाइव हो जाती हैं. तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग. पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके भी सेलिब्रेट करते हैं उसको.
1: आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग.
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं.
1: Wow. That's amazing. And our contest
0: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, कबड़क कबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for gold का rate update.
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Also, happy रक्षाबंधन. रक्षाबंधन की शुभकामनाएं. Gold $4,600, $4,600 पर ट्राई ऑन ट्रेड कर रहा है. जब आप राखी सेलिब्रेशन के लिए अपनी बहन के लिए खूबसूरत सा तोहफा घर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आइए 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड के साथ वो खूबसूरत सी ज्वेलरी 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ, 9 मंथ की फाइनेंसिंग में आज पसंद करके अप्रूव होके घर

0: करें, RajJewels.com को खुशियों में शरीक रखें। थैंक यू।
1: मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Este Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La fiesta la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या के यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ
3: तो नहीं है आपको? मैं यही कह रहा हूँ तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेगा?
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
3: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम. कर लिए काम, जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
2: है?
3: अपने हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning, Priscilla here, bringing you your daily dose of Rashis on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is यानी कि मेष राशि वर्क पर इक्विपमेंट ग्लिच या टची कोवर्कर मूड खराब कर सकता है. डीप ब्रेथ लो, लॉन्ग वॉक स्लो एंड रिप्लाई ऑल से पहले दो बार सोच लो. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पैसा और पर्सनल बिलोंगिंग्स पर नजर रखो यार. वॉलेट को वेकेशन पर मत भेज देना. मेडिटेशन तुमको ग्राउंडेड रखेगी. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, रूटीन और अथॉरिटी से रिबेलियन का मूड हो सकता है. वर्ड को फिल्टर करके यूज करो. हर थॉट को प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना जरूरी नहीं होता है. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 7. कैंसर यानी कर्क राशि, आज इंपल्स कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. ड्राइव केयरफुली, स्पीक थॉटफुली और अननेसेसरी ड्रामा को नॉट इंटरेस्टेड बोलकर स्वाइप कर दो. लकी कलर इज बेबी ब्लू. लकी नंबर इज 19. लियो यानी कि सिंह राशि, हेल्थ थोड़ी सी स्लो कर सकती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट टास्क को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर लो. आज लायन को भी पावर नैप अलाउड है. लकी कलर इज सनफ्लावर येलो एंड लकी नंबर इज 33. वर्ग यानी कन्या राशि, क्रिएटिविटी और करियर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग चांस है. दो माइनर हेल्थ डिस्कम्फर्ट्स बॉदर कर सकते हैं. आइडियाज को नोटबुक में कैप्चर करो. ब्रेन का ऑटो सेव रिलायबल नहीं होता है. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 11. मैं हूँ प्रिसिला, मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है. I'll be back with Rashi Zone Part 2. Stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

गाना बजा दूं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फ्राइडे नाइट यानी बड़ी सारी हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं आज। कई बार तो ऐसा होता है बेबी कि मूवी हॉल्स में ना फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही, लेकिन ओटीटी पे थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट को रिलीज होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एवरी फ्राइडे बड़े हॉल्स पे कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्में रिलीज होती थी। फ्राइडे के लिए हमेशा हमारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ना काफ़ी नर्वस रहते थे कि उनकी फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसे में ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ना कुछ कुछ सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, नॉट जस्ट फॉर फ्राइडेज बट ऐसे भी अपनी लाइफ में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने नॉनवेज और लिकर दोनों को छोड़ दिया था बिफोर द रिलीज ऑफ हिज बिग बजट फिल्म। कौन थे वो फिनोमिनल डायरेक्टर एंड एक्टर, अभी बताएगी आपको श्रेया। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
3: हाँ जी,
4: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
3: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
4: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
3: नहीं, कोई बात नहीं।
4: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आई मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
3: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
4: दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। Anjika, this is Naved. I'm calling from Radio Mitch. God bless you. आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

నలుగులు

0: मेरा नाम जोकर ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी राज कपूर साहब को। ये उनके दिल के सबसे करीब फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे दर्शकों के करीब नहीं पहुंच पाई। दिस वाज अ सुपर फ्लॉप फिल्म और इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगा था राज कपूर साहब का। इनफैक्ट वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद उन्होंने जिस फिल्म के लिए अगला काम शुरू किया ना, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया था उस फिल्म के रिलीज तक। वो क्या सैक्रिफाइस था, कौन सी फिल्म थी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी का नाम बॉबी, और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जिससे शायद राज कपूर साहब अपनी सारी बैंक्रप्सी को रिकवर कर पाते, अपने डेट्स को रीपे कर पाते। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ ऑफ आर हिंदी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लेजेंडरी स्टार्स। सो जब राज कपूर साहब की बहुत सारा पैसा लगने के बाद, इनफैक्ट उनका सारा पैसा लगने के बाद, मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ना, तो उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया था बहुत सारे नोन और अननोन रिसोर्सेस से। उनकी ये इकलौती उम्मीद थी अगर उनकी ये फिल्म चल गई तो वो अपने सारे कर्जे को वापस रीपे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पता है एक सैक्रिफाइस किया था, एक नहीं बल्कि दो सैक्रिफाइसेस किए थे। उन्होंने नॉनवेज को और लिकर को, ड्रिंक्स को तब तक हाथ नहीं लगाया था जब तक बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की रिलीज पे ही बॉबी को सुपर हिट नहीं कह दिया गया, एंड आफ्टर दैट ही पार्टीड। तो इसी बात पे बॉबी का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 2903 364

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yeah!

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें और आज उस जमाने के सुपरस्टिशंस भी चल रहे हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड मैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स के ना सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, कुछ टोटकों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसपे वो बिलीव करते हैं। अब अगर हम द सुपरस्टार बच्चन साहब को लें तो ये सबको पता चल गया है ना अब तो कि अमिताभ बच्चन इंडिया का कोई भी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखते। उनको ये लगता है कि जब जब वो लाइव देखते हैं ना इंडिया हार जाती है, और अगर कहीं बैटिंग कर रही होती है तो बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना वो सबको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा करके छोड़ देते हैं एंड आफ्टर द मैच ही वॉचेस देम। लेकिन ये वाला सुपरस्टिशन उनका सबको पता है, एक जो सिर्फ मुझे पता है मैं अभी आपको बताऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया बैक टू बैक चल रही है। आज मैं सुपरस्टिशंस ऑफ हमारे लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ। बच्चन साहब का क्रिकेट को लेकर के क्या सुपरस्टिशन है ये तो सबको पता है कि वो कोई भी इंडिया का मैच जो है ना क्रिकेट का, वो लाइव नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो लाइव विटनेस करेंगे तो इंडिया हार जाती है। एनीवे, दूसरा सुपरस्टिशन जो उन्होंने बातों ही बातों में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंक्चुअल बहुत है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर के, किसी भी सेट पे पहुंचने को लेकर के। ही सेड कि मैं इतना ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता, जो वो कभी नहीं होते हैं, तो उनके दिल में एक खटास सी हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस सेट पे लेट क्यों पहुंचा। क्या आज का दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा? इमेजिन, उनका ना समय पे कंट्रोल है जो किसी का नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई ही इज दी बच्चन। इसी बात पे बच्चन साहब का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन।
2: नो।
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
4: मिर्ची
5: इसका बना उसका बना सबका बना
6: क्या बना
5: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
7: हेलो
8: हेलो
7: हेलो
8: जयदीप।
7: हाँ जी।
8: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
7: हाँ जी।
8: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या के यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
7: मतलब
8: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं,
7: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ
8: तो नहीं है आपको। मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं,
7: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेगा।
8: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
7: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
8: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
7: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
8: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
7: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
8: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है अभी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा।
7: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा।
8: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
7: तो कहाँ पे है तू?
8: बैंक में।
7: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
8: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
7: है?
8: अपने हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने?
7: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
8: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
7: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो,
8: ठीक है? मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

जीतू जी आज भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं और इसीलिए वो थोड़ी पूजा पाठ करके ही किसी भी प्लेन को बोर्ड करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ द जंपिंग जैक उनको कहा जाता था बिकॉज ही डांस सो वेल। सो जितेंद्र जी का ये सुपरस्टिशन है कि कोई भी फ्लाइट वो बोर्ड कर ले उनको थोड़ी सी पूजा करनी होती है एंड ही सेज कि उनको फ्लाइट फोबिया है क्योंकि इनिशियल डेज में उन्होंने जब जब फ्लाइट ली तो उसमें टर्बुलेंस रहा, फ्लाइट थोड़ा डगमगाई, ऑल ऑफ इट, उससे उनके दिल में डर घर कर गया और इसीलिए वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऊपर वाले को बहुत अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बटर लगाते हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, जीतू जी की बात हुई है, उनका गाना ना हो ये गुस्सा कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सो कमिंग योर वे इज अ सॉन्ग और उसके बाद मैं यहीं बैठी हूँ, मिलते हैं कुछ गानों के उस पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष घई की फिल्म थी ये राम लखन, और सुभाष घई का सुपरस्टिशन शेयर करूं मैं पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सुभाष घई का ये सुपरस्टिशन तो हम उनकी हर फिल्म में देख, इनफैक्ट जो फिल्में उन्होंने 2000s में बनाई उसमें भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो परदेस हो या फिर तालो। तो सुभाष घई को हमेशा लगता है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस भी फिल्म में वो खुद आते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुझे याद है कि इस फिल्म राम लखन में भी उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है छोटा सा, यादें में इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है, ताल में, परदेस में, इन सब में आप सुभाष घई को देख सकते हो। वैसे आज कुछ ऐसे ही टोटकों की बात हो रही है, कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस की बात हो रही है जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स मानते हैं। कम राइट बैक, विल शेयर मोर विद यू। मैं हूँ श्रेया, यू कैन कैच मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, हैंडल है मेरा आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

गतिक्रा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

नासिर हुसैन साहब ने अपने फेवरेटिज्म को छिपाने के लिए बात कही हो या फिर अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को विद आशा पारेख, लेकिन वो हर बार ये कहते थे कि आशा पारेख उनके लिए बहुत ही लकी हैं एंड दैट इज व्हाई वो उनको अपनी फिल्मों में रिपीट करते थे। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड स्टार्स की। सो कैमरे के पीछे डायरेक्टर नासिर हुसैन, कैमरे के उस पार आशा पारेख, और इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनमें से तीन तो थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल एंड ऑफ कोर्स मोर ऑफ देम। लोग तो ये भी कहते हैं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख के बीच में ना लव एंगल था। आशा पारेख ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी डायरेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने इसको सुपरस्टिशन का एंगल दिया, आशा पारेख को अपनी फिल्मों के लिए लकी माना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, तो इसी बात पे तीसरी मंजिल का गाना हो जाए, डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन एंड हीरोइन बीइंग ऑफ कोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इनकी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि काका हमेशा इन्हीं का नाम रेकमेंड करते थे, और इसीलिए 9 फिल्में इन्होंने एक साथ करी विच वॉज सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ आज ना मैं सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, हमारे बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो उन्होंने एकदम शिद्दत से फॉलो किए। अगर काका की बात लें यानी राजेश खन्ना जी की बात लेना, तो उनके लिए मुमताज जी बहुत लकी थी, ऐसा राजेश खन्ना ने इंटरव्यूज में भी कहा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत लाइक किया। एंड मुमताज जी उनके साथ काम करने से पहले ना बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन काका और उनकी जोड़ी ए ग्रेड थी। तो राजेश खन्ना मुमताज को अपनी हर फिल्म के लिए बहुत लकी मानते थे, और इसीलिए डायरेक्टर्स को उन्हीं का नाम सजेस्ट करते थे। आपकी कसम हो, दो रास्ते हो, अपना देश हो, प्रेम कहानी हो, सो मेनी ऑफ देम, पूरी 9 हिट फिल्में। तो इन्हीं दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्वीट सेंशस गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें थोड़ा नटखट हो रही है मुमताज जी एज ऑलवेज, उन्हें प्यार से बाय द वे काका मोटी कहा करते थे, और राजेश खन्ना ऐसे दिखा रहे हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी हीरोइन की बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida para burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आई मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

इस फिल्म में लीड हीरो तो ऋषि कपूर थे और उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे थे राकेश रोशन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। राकेश रोशन साहब का सुपरस्टिशन तो हम सबको पता है, जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो सब फिल्में केस से शुरू होनी थी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ फिल्म मेकर 1987 की खुदगर्ज वो सुपरहिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई के से ही खून भरी मांग, फिर उनको के का ना एकदम चस्का चढ़ गया। ही बिकेम लाइक अब भाई मेरी जितनी फिल्में क से शुरू होंगी। फिर उन्होंने बनाई किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया के सीक्वल, क्रिश बनाई, क्रिश के सीक्वल, ऑल ऑफ दैट। अब अगर कुछ करने से आपका आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सुपरस्टिशन तो आ ही जाता है ना उस चीज को लेकर के। राकेश रोशन साहब के साथ भी यही हुआ, किरण नहीं के। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जो आज कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हो फॉर बॉलीवुड स्टार्स। अगले कौन होंगे बताऊंगी, कम राइट बैक।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.
4: On Radio Mirchi, New York. It's hot.
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने ना लता जी को इस बात के लिए बहुत ब्लेम किया क्योंकि वो लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे। पुरानी जीन्स पे आपको श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ आवर बॉलीवुड स्टार्स टुडे। एंड राज कपूर जो थे ना, उनकी हर फिल्म में लता जी का गाना होता था। इनफैक्ट सिर्फ लता जी ही गाती थी अगर फीमेल गाना है तो। लेकिन एक फिल्म जिससे ये प्रथा को रोका गया वॉज मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में लता जी की आवाज नहीं थी और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम धड़ाम गिरी, फ्लॉप हुई, तो राज कपूर ने एक्चुअली में लता जी को भी ब्लेम किया कि दीदी तुमने इस फिल्म में गाना नहीं गाया था मेरे लिए, इसीलिए ये अनलकी रही। पुरानी जीन्स पे राज कपूर साहब की फिल्म जिसके लिए लता जी ने गाना गाया, वैसे तो बहुत सारे पर ये वाला मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ। सुनिए और वापस आइए श्रेया के साथ।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हेट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। आई मीन पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नज़रें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नज़र आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज़ मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: क्या आज भी एक लड़की के कपड़े उनके संस्कार का सर्टिफिकेट होते हैं?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है यार, क्योंकि रक्षाबंधन का एक एड काफी वायरल हुआ फिलहाल, जिसमें कृति सैनन थी। दो रीजंस थे ऑफ द एड टू गो वायरल। वन वाज कि वो अपने भाई के साथ उस एड में अपने कुत्ते को भी राखी बांध रही थी, एंड दूसरा उनके कपड़े, मतलब उन्होंने एक ब्रालेट, एक केप और एक स्कर्ट पहनी हुई थी, एंड पीपल गॉट ऑफेंडेड ऑन दैट। और इस चीज को लेकर इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ कि फाइनली उस ब्रांड ने अपने एड को विथड्रॉ ही कर लिया, हटा दिया यार। बट वेट, अगर मेरा पेट मेरी फैमिली है तो उसके साथ प्यार का रिचुअल सेलिब्रेट करना कल्चर के अगेंस्ट कैसे हो गया? और जहां तक कपड़ों की बात है तो भाई, मेरी नेकलाइन मेरी मोरालिटी का मेजरमेंट कब बन गई वो मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया। क्या सीरियसली हमारा कल्चर इतना फ्रेजिल है? और मेरे हिसाब से ना, ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ रिचुअल रिपीट करना नहीं होता, हर जनरेशन उसमें अपना मीनिंग एड जरूर करती है। एंड एज अ गर्ल मुझे बस इतना

0: Milci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burka, burka. La virtuala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: Hanji.
3: Yeah. भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं?
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में।
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपना हथौड़ा ना चलने पर आप लोग सारा ने।
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची। अगर अब तक आपने द रेवोल्यूशनरीज का ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इट लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, गुरफतेह पीरजादा और प्रतिभा रंता जो हैं वो लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। एंड दिस सीरीज इज अ टेक ऑन ब्रिटिश राज, जिसको डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, बट इट इज इंस्पायर्ड बाय संजीव सान्याल की बुक रेवोल्यूशनरीज से, जो 11th of September से Amazon प्राइम पे स्ट्रीम करने वाली है। सो बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। जीवन भीमा योजना, नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नाम नहीं है। यहाँ जीवन एक बंदा है, भीमा भी दूसरा बंदा है, और ये दोनों ही रोल निभा रहे हैं अरशद वारसी। हाँ जी, इस फिल्म का ट्रेलर इज हियर, जो कि एक अपकमिंग डार्क कॉमेडी है, और इसमें अरशद वारसी के अलावा संजीदा शेख, विजय राज और पूजा चोपड़ा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक डोगरा ने, जो 4th of September को थिएटर्स में आएगी। एंड यस, इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब किसी फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल निभाते नजर आएंगे। ब्रह्मास्त्र के लिए आयान मुखर्जी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं नमित मल्होत्रा के लिए। बेसिकली आपको बताया था ना, जियो स्टूडियोज की बैकिंग चली गई है इस। सो मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था दैट जियो स्टूडियोज की बैकिंग एज द स्टूडियो पार्टनर चली गई है फ्रॉम ब्रह्मास्त्र 2, जिसके बाद आयान मुखर्जी एक नए स्टूडियो पार्टनर की खोज कर रहे हैं। एंड दिस इज वेयर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैज कम इनटू पिक्चर। अब ये बातचीत किस लेवल पे जाती है उसका पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं तो फिल्मी गेम खेलने की बात कर रही थी। आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? डर्टी माइंड। चलिए चलिए चलिए, अब दिमाग को वापस ट्रैक पे लाते हुए आपको याद दिला दूं, इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्मची। सो बेसिकली यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अनुपमा जी। सबसे पहले बताना चाहूंगी मैम कि आज इस गेम की शुरुआत मैंने थोड़े पुराने जमाने की फिल्मों से की है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो तीन भाई हैं जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और फिर साथ आते हैं। इनका एक गाना है कि एक जगह जब जमा हो तीनों।
3: अमर अकबर एंथनी।
0: क्या बात है, अमर अकबर एंथनी में एक गाना है जिसमें एक हीरो जो है वो अंडे के अंदर बैठ के एंट्री मारता है।
3: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
0: क्या बात है, कौन है ये?
3: अमिताभ बच्चन।
0: बहुत बढ़िया, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो और उनकी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते थे।
3: सिलसिला।
0: बहुत बढ़िया, सिलसिला में चांदनी कौन है?
3: मेरी फेवरेट रेखा।
0: ओहो, रेखा की किस फिल्म में उनका बेटा एलियन से कांटेक्ट करता है?
3: कोई मिल गया।
0: वाह, कोई मिल गया में एलियन किसको सुपर पावर देता है?
3: वो उसको देता है, ऋतिक रोशन, रोहित को।
0: बहुत बढ़िया, ऋतिक रोशन किस फिल्म में पिंक कलर का फोन यूज करते हैं?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिलों में अपनी बेताबियां कौन लेकर घूम रहा है?
3: फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: वो यार कौन सी थी, कौन सी थी, कॉलिंग।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
3: कार्तिक कॉलिंग।
0: बहुत बढ़िया, कार्तिक कॉलिंग।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: किसी के दिल से नहीं, बट मैं मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने शुरू किया था नितिन जी से बड़ी गॉड स्टार पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं गीतांजलि। तो क्या तैयार है मैम?
3: जी बिल्कुल।
0: ओके, तो वो जहाँ जिस क्वेश्चन पे अटके थे, वो सवाल था जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी,
3: वो तनु वेड्स मनु।
0: क्या बात है, तनु वेड्स मनु में तनु से लव एट फर्स्ट साइट किसको होता है?
3: यार ये आर माधवन को।
0: जी, आर माधवन की फिल्म जिसमें वो हौसला, ईंधन और बदला सिखाते हैं।
3: धुरंधर द रिवेंज।
0: धुरंधर द रिवेंज में मेजर इकबाल कौन है?
3: अर्जुन रामपाल।
0: यस, अर्जुन रामपाल की फिल्म जिसमें वो शांति प्रिया को झूमर के नीचे मारते हैं।
3: ओम शांति ओम।
0: क्या बात, ओम शांति ओम में ओम के दोस्त कौन है?
3: श्रेयस तालपड़े।
0: वाह वाह, श्रेयस तालपड़े की फिल्म जिसमें वो स्टैमर करते हैं।
3: गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में माधव कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: यस, अरशद वारसी किस फिल्म में बड़ा वाला डब्ल्यू ढूंढते हैं?
3: बड़ा वाला डब्ल्यू शायद उसमें धमाल में।
0: हाँ जी बिल्कुल सही, शायद नहीं बिल्कुल सही, धमाल में करप्ट पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: संजय दत्त।
0: यस, संजय दत्त की फिल्म जिसमें वो अपनी माँ को 50 तोले की गोल्ड चेन फ्लॉन्ट करते हैं।
3: वास्तव।
0: क्या बात है, और आप भी वास्तव में फिल्मची हैं एकदम बड़ी वाली।
3: इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था।
0: बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल के।
3: थैंक यू सो मच मैम।
0: ऑनेस्टली थैंक्स टू आप लोगों को बोलना चाहिए कि आप फुर्सत निकाल के मेरे डीएम्स में जाके अपना नंबर भेज देते हो यार। तो चलिए इसी बात पे डिक्लेयर करते हैं गीतांजलि जी को आज के हमारे शो की दूसरी
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी थोड़ा फोमो में है, देन वरी नॉट, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए एंड आई विल कॉल यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue.
2: 750 only? Yes, sir, absolutely. No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghej mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Yeah, pagla.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab... मिर्ची का
0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और फेस्टिवल्स का एक अटूट बंधन है।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बात जब रक्षाबंधन की हो तो भले ही स्पेसिफाइड भाई बहन के रिलेशनशिप पे कोई मूवी नहीं आई है, बट बहुत सारी ऐसी कहानियां रही हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज रही हैं जिनकी स्टोरी लाइन्स में भाई बहन के रिश्ते को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। एंड दैट इज द रीजन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही मूवीज की बात कर रही हूँ। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट जाने तो या जाने ना। अब बात करते हैं फिल्म जोश की। सो मंसूर खान डायरेक्टोरियल ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2000, स्टारिंग शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, चंद्रचूर सिंह एंड शरद कपूर इन द लीड रोल्स। और इस फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के बीच में जो भाई बहन की केमिस्ट्री है, ओहो, सबसे पहली चीज तो इन दो वंडरफुल एक्टर्स को ऑन स्क्रीन भाई बहन का रोल निभाता देख मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था, बट बाय द एंड काफी अच्छा भी लगा था, क्योंकि दोनों अपने अपने रोल्स में रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा अडोरेबल थे। दे डिड लुक लाइक सिबलिंग्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग दैट दे शेयर्ड। बट हाँ, एक छोटी सी फ्लॉ थी इस मूवी में और वो था द सॉन्ग ये उसका स्टाइल होएगा होटो पिना दिल में हाँ होएगा। मतलब बींग अ सिस्टर, मैं अपने भाई को ऐसे बोस्ट नहीं कर रही होती टू पटाओ फाई द गर्ल जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये बोल के कि अरे कोई नहीं भाई, ये उसका स्टाइल होगा, मुंह पे नहीं है लेकिन दिल में तो हाँ ही होएगा। समझ रहे हो आप वो बात? खैर, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट क्वीन में रानी यानी कंगना रनौत और उनके भाई के किरदार की। सो डायरेक्टेड बाय विकास बेल ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2013, जिसमें कंगना रनौत, राजकुमार राव और लीजा हेडन जो है वो लीड रोल्स में थे। बट टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत और उनके भाई का किरदार और उनका बॉन्ड, दैट वॉज रियली अमेजिंग यार। वैसे कंगना के भाई का किरदार निभाया था चिन्मय अग्रवाल ने, जिनको चिंटू मेहरा के नाम से जाना जाता है इन द फिल्म। और जिस तरीके से इस भाई ने अपनी बहन को उसके लाइफ डिसीजंस में सपोर्ट किया, उसके साथ खड़ा रहा, दैट वाज रियली अप्रिशिएटिंग। क्योंकि बाबू मोशाय कहानी में अगर रानी के भाई ने उसके लिए कवर अप नहीं किया होता तो वो अपने हनीमून पे अकेली नहीं जा पाती और अपने आप को, अपनी जिंदगी को जिस तरीके से वो समझ पाई वो नहीं हो पाता। सो या, एवरी गर्ल should have a boy like Chintu from the film Queen. वैसे मेरी इस लिस्ट में अभी और भी दो मूवीज की डिस्कशन बाकी है, बट वो सब आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: क्यों ना इस बार कुछ डिफरेंट किया जाए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो, हर बार रक्षाबंधन पे आप अपने भाई को राखी बांधते हो और वो आपको गिफ्ट्स दे देते हैं, बट इस बार आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो। एज इन अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से राखी खरीदने के अलावा आप अपने भाई को अ सेट ऑफ बॉलीवुड मूवीज भी गिफ्ट कर सकते हो, जिसमें भाई बहन के रिश्ते को, सिबलिंगहुड के एसेंस को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी यार, क्योंकि आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही मूवीज की बात कर रही हूँ। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट जाने तू या जाने ना, नंबर दो पे हमने बात की जोश के बारे में, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट क्वीन, और अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट मेरे फेवरेट भाई के बारे में। वेल, इट इज फ्रॉम द फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। सो डायरेक्टेड बाय सोहेल खान, ये फिल्म आई थी इन द ईयर 1998, जिसमें सलमान खान, काजोल, अरबाज खान, धर्मेंद्र, अंजला जवेरी और किरण कुमार लीड रोल्स में थे। वैसे इस फिल्म में जिस तरीके से अरबाज खान को काजोल का एक प्रोटेक्टिव ब्रदर दिखाया गया है ना, दैट इज रियली रिलेटेबल, क्योंकि मेरा भाई तो ऐसा ही है। और अरबाज खान एक आइडियल ब्रदर थे हु न्यू हाउ टू प्रोटेक्ट हर एंड डिसाइड द बेस्ट फॉर हर। अब वो उसका लव रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, भले ही बहन को किसी से प्यार है, लेकिन भाई जरूर चेक करेगा कि वो लड़का मेरी बहन के लिए सही है या नहीं है। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम साथ साथ हैं के बारे में। एंड अगर हम इस फिल्म की स्पेसिफिकली बात करें तो इस फिल्म ने आइडियल ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है, डिस्पाइट फेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स, बिकॉज द लव एंड अफेक्शन दैट द ब्रदर्स शेयर फॉर देयर ओनली सिस्टर इन हर ट्रबल्ड एंड गुड टाइम्स इज ट्रूली कमेंडेबल, विच सेलिब्रेटेड द स्पिरिट ऑफ सिबलिंगहुड इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म। वैसे अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी मूवी आ रही है तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। कहाँ? MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची। अगर अब तक आपने द रेवोल्यूशनरीज का ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इट लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, गुरफतेह पीरजादा और प्रतिभा रंता जो हैं वो लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। एंड दिस सीरीज इज अ टेक ऑन ब्रिटिश राज, जिसको डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, बट इट इज इंस्पायर्ड बाय संजीव सान्याल की बुक रेवोल्यूशनरीज से, जो 11th of September से Amazon Prime पे स्ट्रीम करने वाली है। सो बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। जीवन भीमा योजना, नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नाम नहीं है। यहाँ जीवन एक बंदा है, भीमा भी दूसरा बंदा है, और ये दोनों ही रोल निभा रहे हैं अरशद वारसी। हाँ जी, इस फिल्म का ट्रेलर इज हियर, जो कि एक अपकमिंग डार्क कॉमेडी है, और इसमें अरशद वारसी के अलावा संजीदा शेख, विजय राज और पूजा चोपड़ा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक डोगरा ने, जो 4th of September को थिएटर्स में आएगी। एंड यस, इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब किसी फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल निभाते नजर आएंगे। ब्रह्मास्त्र के लिए आयान मुखर्जी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं नमित मल्होत्रा के लिए। बेसिकली आपको बताया था ना, जियो स्टूडियोज की बैकिंग चली गई है इस। सो मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था दैट जियो स्टूडियोज की बैकिंग एज द स्टूडियो पार्टनर चली गई है फ्रॉम ब्रह्मास्त्र 2, जिसके बाद आयान मुखर्जी एक नए स्टूडियो पार्टनर की खोज कर रहे हैं। And this is where upcoming highly anticipated film Ramayan के producer Namit Malhotra has come into picture. अब ये बातचीत किस लेवल पे जाती है उसका पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मर्जी सिद्धि और स्वागत है आपका शुक्रवार की शाम में। और ये शाम और भी खास है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। सो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूं आज का दिन आपके घर में हंसी मिठास और बहुत सारी प्यारी मेमोरीज लेकर आए। फिर चाहे आप अपने भाई बहन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, वीडियो कॉल पर राखी बांध रहे हो, या फिर हजारों माइल दूर होके भी दिल से कनेक्टेड हो। यार फेस्टिवल्स की ना खूबसूरती ही यही होती है कि वो डिस्टेंसेस को ना और भी छोटा कर देते हैं। और आज का दिन हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। तो सबसे पहले तो थैंक यू हर उस लिसनर का जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। आप सबका प्यार और रिस्पॉन्स देख कर ना दिल बहुत ही खुश हो गया। और जो लकी पार्टिसिपेंट्स के नाम सिलेक्ट हुए जिन्होंने अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की है, आज उनसे मिलेंगे विरानी ज्वेलर्स पर ओक ट्री रोड इजलैंड पर। और वही होगा हमारा विनर मीटअप एंड प्राइज कलेक्शन। वैसे मैं भी आपसे वहां पर मिलने आने वाली हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों थैंक यू वंस अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ एंड विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलैंड, जहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो अपनी रक्षाबंधन की शॉपिंग जरूर कीजिए फ्रॉम विरानी ज्वेलर्स। एंड फॉर मोर डिटेल्स विजिट viranijewelers.com। एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरी मिर्ची की फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन न्यू जर्सी। अपनों के साथ वक्त बिताइए, मिठाइयाँ खाइए और इस खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट कीजिए। चलिए अब इस फेस्टिव मूड को म्यूजिक के साथ और भी स्पेशल बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Grabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेगा.
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना. काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना. काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है अभी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा. काम कर लिए, काम जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही.
2: तू कहाँ पे है? तू
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक है. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: तो चलिए आज ही ऐसे ही एक पार्टिसिपेंट से हमारी बात होने वाली है जिनका नाम है प्रतिभा जी। नमस्ते प्रतिभा जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: मस्त हूँ।
1: तो प्रतिभा जी, आपकी रक्षाबंधन की तैयारी हो गई?
2: हाँ, हो गई है।
1: आप अपनी रक्षाबंधन की कोई भी एक प्यारी मेमोरी हमें बताइए।
2: मैं मेरे घर में बड़ी हूँ और मेरे दो छोटे भाई है, तो उनको मुझसे राखी बंधन का आनंद कुछ अलग ही था। मेरी शादी जरा जल्दी हो गई, फिर भी मैं हर साल उनको राखी बंधन के लिए भी जाती हूँ। और वो जब छोटे थे तब उनको जो मैं गिफ्ट लेके जाती थी वो देखकर तो वो बहुत ही खुश होते थे। अब वो बड़े हो गए हैं, अभी वो मुझे बोलते हैं, बचपन से आपने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, अब हमारा है, हम उसके डबल गिफ्ट आपको देने वाले हैं। ऐसे बचपन की वो उनकी वो अनोखी खुशी मुझे आज भी याद आती है।
1: ओहो, क्या बात है प्रतिभा जी। वो कहते हैं ना, बचपन में आप उनको राखी भी देते थे और गिफ्ट भी देते थे, यानी डबल इन्वेस्टमेंट करते थे, तो अभी उसके रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, डबल डबल गिफ्ट मिल रहा है। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत ही खूब बात, और थैंक यू सो मच हमारे साथ आपकी इतनी खूबसूरत कहानी शेयर करने के लिए।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
3: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
4: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
5: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
6: Har gana hit, har dusra gana super hit.
7: Only on Radio Mirchi. It's hot.

है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10, क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू, कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: तो चलिए बात करते हैं स्नेहा जी के साथ। नमस्ते स्नेहा जी।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते सिद्धि जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
2: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: आपकी रक्षाबंधन की तैयारी कैसी चल रही है?
2: अच्छी चल रही है, मैं तो उस दिन का हमेशा इंतजार करती हूँ, गिफ्ट मिले, कुछ उपहार मिले भाई से, यही तो बहुत बड़ी बात होती है।
1: क्या बात है। तो स्नेहा जी, आपकी रक्षाबंधन की कोई खास मेमोरी आपके भाई के साथ?
2: हम लोग एक दिन शाम को घर से निकले, राखी का ही दिन था, तो भैया बोले कि चलो कुछ गिफ्ट लेके आते हैं तुम्हारे लिए, तो चलो। तो बस मैं नीचे आई और भैया ने स्कूटर स्टार्ट की, मैं बैठने ही वाली थी, तुरंत स्टार्ट करके आगे निकल गया। आधा घंटा हो गया, थोड़ी देर बाद मुझे सामने से आता दिखा, अरे तुम बैठी नहीं मैंने कहा कि अरे तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे पीछे बैठी नहीं हूँ। बड़े मैं सोच रहा था कि तुम बैठी हो, मुझे तो ये लगा कि आज मुझे मेरा गिफ्ट मिलता है कि नहीं। तब तो मैं भैया से बड़ी नाराज हो गई, पर मैंने कहा अभी इस भूल के लिए कोई माफी नहीं है, अब मुझे तुम्हें डबल गिफ्ट देना ही पड़ेगा।
1: क्या बात है, देखो इसे कहते हैं वसूल करना।
2: बैठो और चलते हो।
1: क्या बात है।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

इंतजार हुआ खत्म दोस्तों, प्लेलिस्ट वाले एमए विर्क नहीं, आज लाइव वाले एमए विर्क होंगे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिछले कुछ दिनों से हम किस्मत की बातें कर रहे थे, फेवरेट एमए विर्क सॉन्ग्स पूछ रहे थे, और टिकट्स जीतने के लिए आपके इतने सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। और फाइनली एमए विर्क मैजिक इज हियर इन न्यू जर्सी टुनाइट। जी हाँ दोस्तों, एमए विर्क यूनिटी टूर आज रात 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर कार्टरेट में होने वाला है। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। मतलब आपको तो पता ही है कि यार कॉन्सर्ट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। और मिर्ची कॉन्टेस्ट के जितने भी विनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जब एमए विर्क आपका फेवरेट गाना लाइव गाएंगे ना, तो मिर्ची को जरूर याद करना। और जिनकी किस्मत इस बार कॉन्टेस्ट में नहीं खुली, यार पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट मिनट टिकट्स अभी जाके बुक कर लीजिए sulekha.com पर। और हो सकता है आज रात आप भी क्राउड में एमए विर्क के साथ गा रहे हो। तो न्यू जर्सी एमए विर्क आ चुके हैं, अब बस आवाज आपकी आनी चाहिए। तो चलिए कॉन्सर्ट से पहले स्पीकर्स पर एमए विर्क का ये मैजिक सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची। एंड आई विल सी यू टुनाइट एट कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर फॉर एमए विर्क यूनिटी टूर। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. Murga. Ne vin bala murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
1: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
2: संतोष. संतोष.
1: संतोष.
2: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं.
2: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
1: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू डू?
2: आई एम एंट्रोनोर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एम्प्रोटोन एम्पो एंट्रोपोन एंट. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: इट्स हॉट.

दाल चावल या आलू पराठा, एसयूवी, मिड साइज एसयूवी या फिर सेडान। यार जितने ऑप्शंस होते हैं ना उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आप भी मेरे जैसे हो ना, क्या जितने ज़्यादा ऑप्शंस दोगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है, तो ऐसे में ना मैं जो अपने डिसीजंस होते हैं वो आउटसोर्स कर देती हूँ। मतलब मैं खुद डिसाइड ही नहीं करती, किसी और को बोल देती हूँ भाई तू मेरे लिए डिसाइड कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ है ना घर के मामले में बिल्कुल भी फेल होती है। अगर खुद का घर खरीदने का सपना है तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस हो उतना बेटर होता है, क्योंकि तभी तो पता चलता है ना कि ये जो बैक यार्ड है जो हमें चाहिए वो सच्ची में चाहिए कि नहीं, बैकयार्ड के साथ फ्रंट यार्ड भी चाहिए कि नहीं, या साइड यार्ड भी चाहिए कि नहीं, फ्लोरिंग किस टाइप की होनी चाहिए, घर का जो किचन है वो किस टाइप का होना चाहिए। जितने ज़्यादा ऑप्शंस देखने मिलेंगे उतनी ही क्लैरिटी और भी ज़्यादा आती है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा घर अवेलेबल हो फॉर सेलिंग। तो अगर आप भी फर्स्ट होम बायर हो तो चलिए मेरे दोस्त बीच से पूछते हैं फ्रॉम लाइन मॉर्गेज कि मार्केट में फिलहाल घर का कितने सारे ऑप्शंस है, क्योंकि यार एक ही तो जिंदगी है और इतने सारे ख्वाहिशें हैं, एक एक पूरी करना भी तो जरूरी है। तो चलिए पूछते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.
4: Hit gana.
3: Radio Mirchi, New York. It's hot.

कुछ फैमिलीज में टैलेंट सिर्फ चलता ही नहीं, विरासत बन जाता है। शमशान दलाई सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और ये बात तो माननी पड़ेगी रोशन फैमिली के लिए, क्योंकि सबसे पहले द लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को टाइमलेस क्लासिक्स दिए, फिर उनके बेटे राजेश रोशन, जिन्होंने अपनी मेलेडी से एक नए जनरेशन को कहो ना प्यार है कोई मिल गया, करण अर्जुन जिसे इतने सारे यादगार गाने दिए, फिर हमारे राकेश रोशन जो कि यार इतने सेलिब्रेटेड डायरेक्टर रह चुके हैं, और फिर उनके बाद आते हैं सुपरस्टार ऋतिक रोशन, जिन्होंने एक्टिंग, डांसिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से यार अलग ही पहचान बना दी, और ऋतिक रोशन के अब बेटे रिहान रोशन, इन्होंने रोशन फैमिली का अगला चैप्टर शुरू कर दिया है, लेकिन एक्टिंग से नहीं म्यूजिक से डेब्यू किया है। उनका पहला ओरिजिनल सिंगल दिस हेवनली प्लेस रिलीज हो चुका है, मतलब यार इस बार ना रोशन फैमिली का नया टैलेंट कैमरा के सामने नहीं माइक्रोफोन के पीछे अपनी अलग पहचान बना रहा है। वैसे यार एक ही फैमिली, लेकिन हर जनरेशन ने ना अपनी अलग कहानी अलग तरीके से लिखी है, किसी ने कंपोजिशन से, किसी ने डायरेक्शन से, किसी ने परफॉर्मेंस से, और अब एक नई जनरेशन म्यूजिक के जरिए अपनी पहचान बना रही है। तो अब देखना तो यही होगा कि रिहान भी रोशन का नाम और रोशन कर पाते हैं कि नहीं, और इस म्यूजिकल लीगेसी को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। और जब बात म्यूजिक की हो रही है तो चलिए सुनते हैं ऋतिक रोशन का ये एवरग्रीन गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए, अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा

सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं। टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with
3: us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yeah, bhaiya.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। श्याम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविथ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपर हिट एल्बम का सुपर हिट गाना बलम पिचकारी, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहेबान मेहरबान कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज़ में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में, घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तब तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विथ अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उस उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था, फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना, मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो, दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड़ पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही, संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था, क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना, तो लगता है कि यार एक ही सफ़र को दो नज़रियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना, ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची।

आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है। वो बजाते हैं यहाँ पर, फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बस इंतजार हुआ खत्म दोस्तों, प्लेलिस्ट वाले एमए विर्क नहीं, आज लाइव वाले एमए विर्क होंगे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिछले कुछ दिनों से हम किस्मत की बातें कर रहे थे, फेवरेट एमए विर्क सॉन्ग्स पूछ रहे थे, और टिकट्स जीतने के लिए आपके इतने सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। और फाइनली एमए विर्क मैजिक इज हियर इन न्यू जर्सी टुनाइट। जी हाँ दोस्तों, एमए विर्क यूनिटी टूर आज रात 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर कार्टरेट में होने वाला है। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। मतलब आपको तो पता ही है कि यार कॉन्सर्ट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। और मिर्ची कॉन्टेस्ट के जितने भी विनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जब एमी विर्क आपका फेवरेट गाना लाइव गाएंगे ना, तो मिर्ची को जरूर याद करना। और जिनकी किस्मत इस बार कॉन्टेस्ट में नहीं खुली, यार पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट मिनट टिकट्स अभी जाके बुक कर लीजिए सुलेखा.com पर। और हो सकता है आज रात आप भी क्राउड में एमी विर्क के साथ गा रहे हो। तो न्यू जर्सी एमी विर्क आ चुके हैं, अब बस आवाज आपकी आनी चाहिए। तो चलिए कॉन्सर्ट से पहले स्पीकर्स पर एमी विर्क का ये मैजिक सुनते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची। एंड आई सी यू टुनाइट एट कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर फॉर एमी विर्क यूनिटी टूर। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana,
1: escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: Hanji.
3: Yeah. भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में।
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
2: है?
3: अपना हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने।
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुली नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर, तू फोन रख भाई, तू मेरे पास कॉल मत करियो।
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए हैं। दोनों का ना अपना ही एक अलग चाव है। एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: और सीकी स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ऑयंतिका एंड डीजे रिचर्ड ओनली